रख ले हो हम ते बिदरी शील तरम जप भगत न कीनी हाँ अपमान तेग पगरी अमर जान संची एकाया एह मिथेया काची गगरी।

0: कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखें दर्श तेरा राम, लाख जेगवा देहो मेरे प्यारे।
1: मुख हर आराधे मेरा राम,
0: हर आराधे जम पंथ सादे, दुख ना व्यापै कोई, जल थल मैयल पूर्ण स्वामी,
1: जत देखा।

जब इन किछ कर्म ने पिता तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एकी बुझया तब

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की कीमत परी

0: जुग वेदानाले
1: मोहनी अमन मोहन सुरगम अश पयाले
0: गावन रत्न पाए तेरे अठसठ तीरथनाले
1: गावन जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे
0: गावे खंड मंडल पर पंडा।

0: आशीष दे सकिया पिज भेसा के आगे कर्म किया पंच भरम
1: पिज लोग कह के आदित्य सो कह के अवधूत वर्ण के भूत
0: राज प्रभंग धर्म तो जाए के आ सुख वर्ण के सर्वा भरना
1: जगतं कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के

0: करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं तली है, कि
1: सर्वत्र मान है, कि सर्वत्र दान है, कि सर्वत्र गौण है, कि सर्वत्र पौण
0: है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र
1: के सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाओ, कि सर्वत्र पाहो,
0: कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है,
1: सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंधा, कि सर्वत्र पेकी, कि सर्वत्र पेकी,
0: कि सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है,
1: के
0: सर्वतर सुख है,
1: के सर्वतर प्राण है, के सर्वतर प्राण है, के सर्वतर देश है, के सर्वतर पेश है,
0: के सर्वतर मान्य है, सदैव अंग प्रधानी है, के सर्वतर जापी है, के सर्वतर
1: सर्वतर भान है, के सर्वतर मान है, के सर्वतर इंद्र है, के सर्वतर चंद्र
0: है, के सर्वं कली में, के फर्मंग फहीमे, के आकल अलामे, के साहेब कलामे, के
1: वजूद मामल रुजुमे में सुसलामे सलिखत मदामे,
0: गरीब शिकस्त है, गरीब परस्त है, विलंदल मकाने
1: जमीन जोर निधान हर कुल जिमर जाय जकीन है,
0: तरंग है, भेद है, भंग है, अजीज निवास है, गनीमल खिलाड़ है,
1: स्वरूप धर्मोक्त भूत प्रभुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है,
0: सदैवंग स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है,
1: समस्त सलाम सदैव काम बास रूप है, गाद अनूप है,
0: गाद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिभार
1: निर्वाद दे गंजे गादे सुभंग सर्भाग्य सर्वण रागी,
0: भक्त स्वरूप है, छिज है, छूत है, के नरकंग प्रणास है, प्रज्वल प्रवास है,
1: प्रवास दैवंग

0: अतीत कर्म अनबन अनंत दाता महंत हर मूल मना संत व प्रसाद
1: करुणालय है हर कालय है खल खंडन है मह मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है
1: जगके त्रण है जाके करण मन मान्य है जग जान्य है
0: सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्पास्य है सर्वनाश्य है
1: विसंग पर है सर्वि

0: जन है, रिप्रतापन है, जप जापन है,
1: अकलं कृत है, सर्व कृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पिचंग पयात छंद,
1: नमो सूर्य नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
1: नमो ताम सुख शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे।

0: भजन की रहे प्यासा।
1: तुम्हें शाड कोई और न त्याऊ, जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ।
0: सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है।
1: आपाद मुझे उभरे है, मरण काल का त्रासन वरी है।
0: जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तो जो करे हो रचा।
1: राख लियो मेरा खनहारे।

0: कर विशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।
1: जमन काल जोगी सब कियो वेद राय ब्रह्मा ज्योतियो।
0: जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।
1: जमन काल सब जगत बनायो देव।

0: ताको कृपाहन अनुमान तो महामूढ़ कछु भेद न जानत।
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हित न पेवत।
0: आप अपनी बुद्ध है जति वर्णत पेन।

0: जगाद स्वरूप स्वयंभव
1: अवृच्छा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख संगरो
0: ये
1: अस्तुता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे
0: पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

0: तेरे सब किश है जिसे है सो पावे
1: सदा सिप सलाह तेरी नाम मन वसावे
0: नाम जिनके मन वस्या बजे शब्द कनेरे
1: कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
0: सच्चा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
1: कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया
0: सदा गुरबान किता गुर बिट हो जिस दिया ये वडियाइया
1: कह नानक सुनो संतोष शब धरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो
0: वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
1: पंच दूत दुवस कीते काल कंट कुमारिया
0: गुर करम पाया।

बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छुटै गुर शरणाई।

तेरे दर्शन विटहो खनिया वंजा, तेरे नाम विटो कुर्बाण हो जा। तू ता मैं माण किया है, तुद बिन केहा मेरा माण हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमै, जुगाद गुरे नमै, सतगुरे नमै, श्री गुरुदेव नमै। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माय मिटावो। सिमरो जास विसंबर एकै, नाम जप अगणता नेकै।

मान तन अंतर सिमरन गोपाल सुब प्रभुत कृपाल आप त्रिडै प्रणव जप पावै नानको वैसु परमगत पावै भगवती भगवंत भगत कारंग सकल त्यागे दुष्ट कारण संग वनते बिनसे सकला परम कर पूजे सकल पार ब्रह्म सासंग पापा मल कावै तिस कौतिक मत तो होए भगवंत की टहल करे नतनीता मान तन अर पिसन प्रीत हर कै चरण हृदय बसावै नानका सा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जुमन प्रबोधे राम नाम आत्म सो दे राम नाम सारस पीवै पंडित के पति जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जुन रावै वेद प्राण समृत बूजै मूल सुख मै जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित कुसदा आदेश बीज मंत्र सर्प को ज्ञान चौवरण मैं जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सासंग पावे जन को ए कर कृपा अंतर उतारे पसप्रीत मुक्त पात्र को तारै सर्व रूप का खुद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काज युक्त कितना पाइये धर्म नाग तस्मिलै जिस लिखिया तुर कर्मा जिसके मन पाप उनका न वास सत्यस का नाम सात रामदास आत्म राम तस्न त्रि आया दास संतन पैतन पाया सदा निकट हर जान सुदास दुर्गे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सोजी परै सकल संगात मुदास सुजुक्त नानक रामदास है।

जगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई तक कीमत के न पाई अनक भक्त बंधन नित करै चन कमल हृदय समरै सतबलारी सतगुरु अपने नाम जिस प्रसाद है सप्रभ जपने और अस पावे जन कोई अमृत पी अमर सो होय उस पुरख नहीं कदे विनाश हो जाके मन प्रगटे गुण सास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेव को दे मोह माया के संग न ले मन मेरा क्या रहा रे कंध कर दीप प्रकाश से नानक परमो दुख तह ते नासे तब तो मैं ठंड बरताई अंध प्यान दुख नाठे पाए जन मन के मिटियन देसे साधु के पूर्ण उपदेश से पौ चुका निरपोय बसे सगल ब्याद मनते गह नसे जिसका सदन कृपा धारी सा संग जप नाम रारी तपाई जू के भ्रम गवन सुन नानक हर रज श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जन सगली मोई अपनी चित प्रभा बनाई अपनी कीमता पे पाए हर बिंदु जनाई कोहे सरनंत्र एको सोय उत्पोत रवै रूप रंग पे प्रगा साध क्या संग रच रचना अपनी कल तहारी अनक बार नानक बलिहारी स्लोक साथ न चाल बिन भजन विखे सगली शार हर नाम कमावना नानक तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधारो और पाव समीत विसारो चन कमृत में और धारो कन कर्ण सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गौ नाम रंथ तन संचो भगवंतो संजना के निर्मल मंत एक आसरा कुमन माए सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुण टुटता वै सो तन हर सेवा दे पावै जिस सुख नित बादशाह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सुभग करे भरी करनी सा सुभा पजर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटिया रोख दलाए सर्व निदान मैर नाम निदान हो जब नानक दरगह प्रवान मन प्रबुद्ध वर के नाए दे दस्तावता वठाए टाको बिघन लागे कोहे जा करे दे बसे हर सोए कल ताती ठंडार नाउ सिमर सिमर सरज पाओ पाओ बिन से पूर्ण होए आसो भगत पाए आत्म प्रगास सत कर जाए बसे अविनाशी कौन नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गौण मिटे प्रभ सेव आप त्यागसन गुरुदेव रत्न का धार वर सिमर प्राण धारन को पावन छूटन हर सिमर शास्त्र वेद विचार अर की

अस्तवरी पूरे गुरु का सुनो प्रिय से पार ब्रह्म नेट कर पे के साथ सा समरो को वेंदा मन तुर की उतरे चंद हा सनत्या को तरंग संजन की तुर मन मांगा आप छोड़ बेनती करो सा सागर सागर तरवा तन के परले भंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पज परमानंद नरक निवार उधार जी योगन को बिंदा मृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कला ले रत्न सुन के माप तो आधार आप तरह लोग निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कमल नागा रंग जाए शब्द नाद बाजे सुन सुनंद करे प्रभ गाचै प्रगटे गोपाल मांत कै माथे नानक दत्न कै साथे संजोग सुन सुन नियाय कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर पे सबरे अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पे गुरुदय पूर्ण सेव की सेवा जंजाल बिकार तिरते राम नाम सुरसना कहते कर प्रसादया प्रभ धारी नानक ने विखे हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीर सावधान एकागर चीत सुखमी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोत निधान सर्व शता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब तीज पाए स्थान वर्ण होवे अमन जान हर तनखार चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत हृदय नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सकते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टि ताए फलते सिन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन को ए सब जुग मैं ता की गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखानी सगल मैं तंद केवल हर नाम गोबिंद पद के मन विश्राम कोट प्रात साध संग मिटे संत कृपा ते जमते छुटे जाके मस्त कर्म प्रभा पाए साध सर नानक ते आई जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण तक दुख निवारै दुर्लभ दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन माहि समाणी दुख रोग बिनसे पै भरमो साध नाम निर्मलता के कर्म सब ती उचता की शोभा बणी नानके गुण नाम सुखमनी

कर लीजे मुग्ध से आना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपा

कारीगर कारीगरा कारखाने विच जाए मिलंदे अपने अपने वर्ण विच चार वर्ण कुल धर्म तरन दे अपने अपने साहिब चाकर जाए जुहार जुड़न दे अपने अपने खेत विच बियो सदा किरसान विजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे अमली रचन अमलियां।

पास टोर जिन कीता तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर बिन भागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल भरी जय जियो वड भागी हर संगत पावे भागहीन भ्रम चोटा खावे बिन भागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल भरी जय जियो बिन संगती सब ऐसे रहे जैसे

मिल सत संगत खोज दसाई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत

करहो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विगसै जियो।

मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल।

बिन दर्शन संत प्यारे जियो हां कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत।

कल घोर समुंदर मैं बूटत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जग तारन को अवतार।

नमस्कार गुरुदेव को। सत नाम जिस मंत्र सुनाया, भव जल विच्चों कढ़ के

जन नानक नाम आधार टेक है। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए तिनके सब दुख

कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्जयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा पूजी, अखोट पधार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे,